द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन।

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हैं,

चावल बन्ने हुए सन पोटली दे विच ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करते। भाई साहब कहिंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उसनू ते अपनी होश ही कोई नहीं। ओह की भगवान कृष्ण नू जवाब देवेगा? अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नू। कहिंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों उहदे लेखे मेटण दा वक्त आया, क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी, ते पोटली चों इक इक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए। एक दाना मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता।

0: चुटिया चलती है
1: अरे तोड़ा चुटिया चलती
0: सुना सुच्चा
1: हर सुच्चा
0: ना बंदिया।

मन विच वस जावे बड़ियां बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़ियां वडियाईयां। बड़ा आनंद है कि रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड भी है, साडा जतन भी है। लोड भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलता। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह दा हो जांदा, उदो रोमा विचो अमृत चढ़ता है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचो, पूरे शरीर विचो, स्वासा विचो नाम उचरिया भी जांदा है, ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचो ते अपने आले दुआले विचो नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिबंत कहिंदे ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल दी गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, ये किवें हो सकता? वो एक अवस्था है।

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत सब सानू दसते ने किते जातक नू वेख ले पपीए नू वेख ले जेड़ा स्वाति बूंद दे पिछे पपी पपी प्या कर दे सब बाणी विच कहिंदे ने

छह उपदेश करते ने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धर्मगुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नूं सतगुर ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नूं पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिन्ना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई बड़ा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नूं, नाम जपण वालियां नूं, सेवा करन वालियां नूं मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत भयारे, ए मेरे मालिका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्यामार का कर कृपा मेरे दे।

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहे गुरु शब्द दा उचारण करदा है उसनु एडा वड्डा फल प्राप्त है के जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ अठ तीर्था दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़े हो कैलाश रहे हो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इस दा महात्म एथे ही बस नहीं अगलियां तुकां विच सर।

बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग ठयो, उन अमृत नाम विशेष कीती जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड़ा वड़ा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी विच बयान करदे हन, भाई वाहेगुरु शब्द

0: पतले की देख, तेरा नाम खुंदकारा।
1: खुंदकारा क्यों दादी?
0: खुंदकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा है।
1: पटरा क्यों दा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। पगर नाम दे दी दाद दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैनू तेरे नाम दी उन्नी टेके जिन्नी के पटरे नु खुंदकारे दी।

प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसी तरह

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारियां नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

अमृत जांका नाव जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही दिओ दे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलदा है ते जड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरखत का नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरखत ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जेड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु का नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अप

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और पज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विचों अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नू भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नू मिल, उन्नू भी दिलासा दे, जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुख

गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गए ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखी तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी के पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है। धन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे, ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन हे नहीं हो सकता। सात संगत, ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत, ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

जद इतने बचन कहे भैन जी ऐ बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकदा साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ए वखरी गल है इना गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने आ हुण तुसीं जाके भाई अजय राम जी नूं लैके आओ शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ये प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओह ही जानता है जिसने ये प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे सो कत जाने पीर पर आई जाके अंदर दर्द ना पाई भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब भी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले वीर कि यह प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओ ही जाने।

हंस हंस के इतने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया के किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि पड़क उठे, पर उन्हां नूं की पता सी

जे हुक्म होया एक रहबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठिया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इना ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ए फुल बन जान। प्रभु दा भगत सी अंदर जेड़ी ए लालसा उत्पन्न होई परमेश्वर ने ओ दी भावना पूरी कीती कौतक वरत्या ओ अंगारे फुल बन गए। ऐथे ही बस नहीं खंबा तपा के लाल कीता है अग नाल हुकम होया हरनाकश दा प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा मैं वेखदा तेरा परमात्मा तेरा परमेश्वर तेरा राम तेनू किवें बचाण वास्ते आउंदा है। जदों प्रहलाद अगे वधिया खंबे नू गलवकड़ी पाण वास्ते उस खंबे दे विचों सेक आया क्योंकि अग नाल तपा के लाल कीता होया सी। मन थोड़ा जा डोल गया भगत दा अंदरों आवाज आई हे भगवान जे मैं इस खंबे नू गलवकड़ी च लिया ते मैं ते सड़ जावांगा। कहंदे ने ऐसी एक दंत कथा सुनन विच आउंदी है कि जानी जला के वेखिया प्रहलाद ने उस खंबे दे उत्ते तां की वेखदा है कि एक कीड़ी तुरी आउंदी है। एकदम ख्याल बदल गया भगत दा कि एक कीड़ी निक्की जही इस खंबे ते उत्ते तुरी आउंदी है ते ए नहीं सड़ रही मैं किवें सड़ जावांगा। कहंदे ने गल वकड़ी पा ले पर एक बारी जरूर मन

संभाले सुमनहा जिन करते करण किया चिंता भी करनी तहा सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जो हरी स्वस्थ स

राजा कूड़ पर जा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार।

ले हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवका वांग उस दी भक्ति करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जानदा हां जिसने विघना दे